0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया फेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

0: बाज तो उस पर बिजली गिर जाए, मेरा यार जो धोखे बाज तो उस पर बिजली गिर जाए।
1: अरे के का है मेरा चढ़ रही है
0: बावड़ा हो रही है
1: हो ना मैं।

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

0: से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

दो कुड़िया साडी गली च रहंदियां, एक पतली एक पहारी। हो पहारी दाते ब्याह हो गया, पतली लगे प्यारी। के दाल में नमक भुल गई, के दाल में नमक भुल गई। जद खिंच के, हाय, वो जद खिंच के छे।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।
1: ये बात ही गया।

0: है रेला ऊंचा पाऊं यू पटका है ये देसी कमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाऊं मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला

0: अपना फर्ज अदा कर गया, असि अपना फर्ज निभावांगे, तेरी रीत नू लैके चलांगे, तेरे वांगू एंड करावांगे।
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

घड़ी ना दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

खफा तो बेकदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है कितनों को जेल हुई जुर्म में इजाफा है हम आना के देर हुई इस कलम से वादा है।

0: कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर सर बेअसर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: बच्चों को चूस कर गुठलिया फेंक दी है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया फेरा वे पंडता खानी कितड़ बहनू रेला आन गिया हुन नी जज जमानत दिंदा।